0: भने खन प्रलो छैन हतार नाइन हो याजु मेवने व छिजी तारे मुई पिब मिमामी मार्बलरी त्रिवबीर देसी चर मुबा गंगा आर्ट ग्यालरी याव मय आछु
1: नै याम भिर तयार तडीमा तारे नासर बजार लम्बी मु मेडा भाग कप ट्रफी प्रमाण पत्र।